वो मैं तो हमेशा कम कर दे। अब कुछ जिन्हें वो मैल बन के लगते हैं, इसलिए मलेच्छ बनता है जिन्हों गुनाह की, भावें वो चोर है भावें हराम खोर है भावें पापी पाप कर जाए भावें कूड़ेहार कूड़े फिराए, सारे गुनाह जड़े ने वो मैल बन गए हैं, हम उनके नाल वो मलेच्छ हो गए। पापियों की लिस्ट तीजे पास के, फिर तीजी पौड़ी में नावा थावां दी जिक्र आ गया इकट्ठे, कहन लगे ओ ना थां भी ने जिहड़े अगम अगम असंखलो ने, जिन्हां नूं कोई जानदा नहीं, जिथे पहुंच कोई नहीं, पर है हुण इत्थे आके चौथे इस पौड़ी विच एक अजीब किस्म दा मसला खड़ा हो गया। और इहदे विच देखियो किन्ना गुरु नूं रब नूं फिकर है। मसला खड़ा होया कि मैनू पुनिया का फिक्र कोई नहीं, पुनिया का फिक्र कोई नहीं, कोई देर सवेर कोई अज पहुंचेगा कोई कल पहुंच जाएगा, फिक्र पुनिया का नहीं। आ जिहड़े मलेच्छ बन गए ने जिन्हां नूं गुनाहां दी मैल लग गई, ते मैल भी इन्नी लगी है कि उन्हां कोल साबुन कोई नहीं धोण वाला, प्रभु निर्मल है, उन्हें मैल नू अपने वेड़े बदल नहीं देना। ए इन्नी मैल ला के मलेच्छ बन चुके ने, जे चाहन भी तो उत्थे पहुंच नहीं सकते क्योंकि उत्थे तां थां ही निर्मल दी है। संसार जिहड़ा है वो दिन रात मैल दे नेड़े हो रहा है, मैल नाल संबंधित हो रहा है। गुरु ने बाणी विच

गुरु ऐसे विश्लेषण करके एक बड़ा ही सूक्ष्म भेद खोल दे। अगली लाइन पढ़े, आपे बीज आपे ही खाओ, हूं चार तुकां अगलियां नूं पहले सोच लें ताकि साडा राह समझण दा आसान हो जाए। कहन लगे, मत समझो पुन्नी पापी कोई आखण नूं ही लफज ने, केवल कहण नूं ही लफज ने, सब कुछ तां उहदे हुक्म विच हो रहा है। गुरु कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, पुन्नी पापी आखण ना है, मत समझो ये आखान ही है, ये आखण ही नहीं, बल्कि कर कर करना लिख ले जाओ, जो कुछ तू कर कर कर रहा है वो सारा लिखत विच आ रहा है, ते वो लिखत दी सारी वही हिसाब किताब जदों जाएगा वो भी तेरे नक जाएगा। करनी आप अपनी के नेड़े के दूर वो तेरे नक जाएगा, कर करना लिख ले जाओ। कह लगे भी ख्याल करी, आपे बीज आपे ही खाओ, जो कुछ तू कर रहे हैं वो मानो तेरे जीवन की धरती में बीजिया जा रहा है। हां एक गल है जी, हुक्म दी है वो समझ ले, वो है आपे बीज आपे ही खाओ, अगली तो पढ़ो नानक हुक्मी आवो जाओ। जीवन का जरा स्थान मिले है ना, जीवन की धरती मिली है, यह हुक्म रुकना है। जिसन भला जीवन ही ना मिलिया हो, शरीर ही ना मिले, उन्हें केड़ा कर्म कर लेना, ना वो पुण्य बीज सकता है ना पाप बीज सकता है। जिंदे को धरती जीवन की कोई, जिंदे को ताणी कोई, जिंदे को शरीर ही कोई नहीं, ना वो पुण्य बीज सकता ना पाप बीज सकता है। हुक्म विच तैनू पुण जां पाप बीजन का साधन मिल गया, तो आ है हुक्म विच। इसलिए हुक्मी लफज आवो जाहो नाल जोड़िया, जमण मरना हुक्म है, भाने आवो जाओ, जिहड़ा आवो जाओ है ना, जमण मरना वो हुक्म विच है। मैं कल की जन्म करके मनुख स्वतंत्र नहीं, कर्म करके स्वतंत्र है। जो कर्म का वेला आया उदो यह नहीं आख्या नानक हुक्मी आवो जाओ, उदो तो आख्या जे वे कर्म कमाते। कर्मी आपो अपने जीत है, धन है मेरा रब जिन्हें यह जीवन की शरीर की धरती तेन सौंप दी, लै इतने हूं अपनी मर्जी नाल कुछ बीज ने बीज उन्हें हुक्म आई, उन्हें तेन परखने पर इस जीवन की धरती से तू

में ना है केवल अखावत नहीं बल्कि कुछ लोगों ने जो पुण्य भी मिले जो पुण्य बीजन वाले कौन में श्रीवास्तव की बात शुरू में कर सकता गुरु सिखा

को समझाना चाहता है, दुनिया के लोगो मैं फिक्र है जेडे मेले ने उन्होंने भी कोई वसीला होना चाहिए। गुरु के इस विचार इस दया का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में कई थावे है। एक थाने की दृष्टांत देंदे मैं गल कही कि सतगुरु ने बाणी में आख्या कि गुरु केड़ा फिक्र विच है कि मेरा रब जेड़ा है वह सच से झूठ न परखद पुण्य से पापी न परखद परखद ते उनकी दरबार उनकी दरगाह में कोई मैला पापी जा नहीं सकता, वो पापिया कढ के बाहर सुट देता। खोटे सच्ची दरगे सुट गए, आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखनहार। खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहर वार, मैले निर्मल दे खजाने विच नहीं आ सकते। खोटे सच्ची दरगे सुटी किस आगे करे पुकार, अगला मसला आ गया जेड़ा अज आया। खोटे मेरे रब दी निर्मल दी दरगाह विच नहीं जा सकते, खोटे मेरे जेड़े ने वह निर्मल दे दरबार विच नहीं जा सकते, उनकी गोद विच नहीं बैठ सकते। की कर बेचारे किथे जा, जिरा असि आखने ना संगत से पंगत की सांझ उ आसम, पर गुरु के दरबार में हर कोई आ सकता है, रब की दरगाह में नहीं। गुरु की दरगाह जी है वह ऐसी है वह कई बार मैलिया को आप चल के जाए, फर्क है गुरु का आप चल उम्मीए को गुरु नानक आप गए ना उम्मीए तो नहीं आया। सज्जन छत को गुरु नानक आप गए छत नहीं आया, फर्क छोटे सच्ची दरगे छुट्टी है वो तू सब छुट्टी गए तुम मैले हो निर्मल के दरबार में नहीं आ सकते। किस आगे करें पुकार, जवाब बड़ा खूबसूरत है अगली लाइन में नाल ही जवाब है, कहने लगे सतगुर पिछे भज पवे। वो जेडे मैले ने ना गुरु उन्होंने भी बौड़ी कर आ चुके हैं गुरु तो वडिया जेडे खोबे ने जेडे मैले ने गुरु उन्होंने भी बौड़ी कर गुरु पिछले भज पवें। यह करनी सार सब तो चंगा तरीका सार करनी उन्होंने को है यो है कि गुरु को आ जाए, मैला भी गुरु को आ जाए। गुरु ने बाणी में इसे भी भाई साहब भाई गुरुदास जी ने इदो भी स्पष्ट कर दिया तो कहने लगे सतगुर गुणी निधाम है, उनके को है गुण तो गुण धोन का काम कर दे। एक ना भरिया गुण कर तो गुणा ना तो सजा सतगुरु जरा वह गुणा का खजाना है।

अजे तक तू हाथ पैर तन शरीर ही देखे ते इस तू अगे शरीर के अंदर चाहत ही नहीं पाई मन के एडा मैला हो गया तू रोज शरीर नु ही धोंदा रह गया सवेरे उठ के इशनान कर लिया साबन नाल चंगे धोती धोबी दे धोते हुए बस्तर पा लै परफ्यूम लगा लिया तू आख्या मैं बड़ा साफ

निष्ठा नाल भूतन नाल तन लिपट जाए तो बस्तर लिपट जाए प्रीत हो जाए साबण वर्त लेने धो लेने मुड़ साफ करके पहन लेने पर कहने लगे भलिया ना किसी साबण नाल ते ना किसी पानी नाल मत नहीं तो जो मत पापा की मैल नाल भरी जाए ना जो मत अवगुणा की मैल नाल मलेच हो जाए उदो धोने लई केवल गुणा का क्योंकि नाम की है गुण पिछले जन्म आ चुकी है नाम गुण है कल इसलिए आया कि जेता किया चेता नाउ जेड़े मेरे मालक ने जो कुछ भी किया है वो ही अपने आप में एक नाउ है क्योंकि उनके कर्म नाम है उनके गुण नाम है गुरु कहते इको तरीका है गुण रूपी नाम नाल ही मत धोती जा सकती है।

मन कर हला गुर मनिया गुरमुख कार कमाए गुर आगै कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा मन कर हला बीजा।

मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाऊ, मन करहला विचारिया मन मुख फात्या महाजाल। गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल, मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल। सतसंगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल। आप छुड़ाए छुटिया सतगुर चरण संभाल, मन करहला मेरे प्यारिया हर देही जोत संभाल। गुर नौ निध नाम विखालिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला जतराई छड़ बिकराल। हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारियाड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले ब्रह्म भव है बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हरे हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल। हम पंखी मन कर हले हर तरबर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब हे मन मह करत गुमाना तब हे बाबर फिरत बेगाना, जब हे हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना। सहज सुहेला फल मसकीने सतगुर अपने मोहे दान दीने राव। जब किस का ये जान समंदा तब सगले इस मिल फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाई तां ते इस संग नहीं बहराई।

कहोती धोती डंडावत प्रसादन भोगा गबन करै गो सगल लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जो न जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिन सजाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निचल सचथाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद बसै तहां पाओ परमा सोग न चिंता आयावन जावन मृत न होता तह सदानंद अनहत आखारी भगत वसै कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पारू कौन करे ताका विचारू कहो नानक जिस कृपा करै निचल थान साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड़ियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई।

जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझाए, जो इस मारे सो दरग सजाए, जो इस मारे सो धनवंता, जो इस मारे सो पतिवंता, जो इस मारे सो ईजती, जो इस मारे तिस हो वह गति।

हर का दास नीच कोल सुन है तिसका संग खिन मह उदर है। कूट मजन जा कह सुन नाम कूट पूजा जा कह ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुर ते बिद जानी। मन अपने मह फिर चेत बिन सुजाई माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम कै रंग। जां कै काम उतरे सब दुख जां कै काम न जो है दूत। जा कै काम तेरा वड गमर जां कै काम हुवे तू अमर। जाके चाकर कौन ही डान जाके चाकर कौन ही बान। जाके दफ्तर पुछे न लिखा ताकि चाकरी करूं बेसिखा।

ना को चतर नाही को मूड़ा ना को हीण नाही को सूरा जित को लाया तति ही लागा सो सेवक नानक जस भागा गौड़ी महला पंजवा।

ब्राह्मण सदा सुहागण ना पिर मरै न जाए गौड़ी महला तीजा कामण हार रस बेदी जियो हर कै सह सुपाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए कामण वर पाए गुरमति रंग लाए एह शरीर कूड़ कुसत भरिया गल ताई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजाए बिन भगती मैल न जाए नानक कामण प्रह प्यारी विचों आप गवाए कामण पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारी रैन सुख सुती जियो अंतर उर तारे अंतर उर तारे मिलिया प्यारे अनदिन दुख निवारे अंतर महलो पिर रावे कामण गुरमती विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागण गुर कै हित अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामण बिनो करे जियो सच न शब्द सिंगारे सच शब्द सिंगारे होम मारे गुरमुख कार्य सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे।

कर्म सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मोह राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपदास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तैन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जन तो पाए ता कारिज को आगे कर धरया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काश टहरया राऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाव करया उड़े उड़िया वैसे कोसा तिस पाछे वचरे शरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा

ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बड़ाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाओ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी।

से जान जुग मह सुखवासी, से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तैन टूटी जम की फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे

सहडूबियले माने एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण घलिया रहो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक दिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आस्था महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरे कित न काम मिल साध संगत बज केवल नाम सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाउ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा।

हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम काबहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बस है मोर परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करें, सब बैरन को आज सिंगरें।

जो बर चाहो सुदम ते पाऊं, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभर है, मरण काल का त्रास निवर है। पूजो सदा हमारे पछा, सरिया स्तुज करो रक्षा।

ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को बलम बद कियो, कड़ कड़ के अंतर

0: भेव
1: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन भिन तो हे देती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज से दज केने ओत पुज खान बहोर रच देने कहूं भूल राजा व बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव।

काल ओ निकट नहीं आए, रक्षा हुई ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट उठरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहो, ताके ताप तनिक मोह हरिहो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सकह न कोई। एक बार जन तुम संभारा, काल फास्ते ताहीं उबारा,

सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस दिया ए वढ़ियाइया। कहे नानक सुनो संत सब धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया।

होए उधारो। ए वास्तव तजी न जाई नित नित राख्यो रतारो। तम संसार चरण लग तरिए सब नानक

श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सर्वंश दान दे कारनामे पढ़ के दुनिया के दानी दंग हो जाते हैं। सर्व कला समर्थ से सारे गुणा सुपन्न कलगी धार दे अनोखे से अद्भुत दान बारे इउं जिक्र किया जाता है।

0: ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਦਲਣਾ ਜਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੋਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਗਰ ਮਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਮਦਮਾ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੰਤਰ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਸ ਨਾਲ ਵਰ ਜਾਂਦੇ, ਰਤਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਵਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਅਜੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਸ ਰਸ ਦੇ। ਅਜੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਸਵਾਦ ਆ ਗਏ, ਰਸ ਸਵਾਦ। ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਰਸ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਅਗੰਮੇ ਹੀ ਰਸ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਐਸਾ ਰਸਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਆਸਨ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਨਵਾਸ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਕਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਨਾ ਬੇਕਾਲਾ ਆਖਦਾ। ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤਨੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਗਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਨ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ, ਉਹ तो कहने लगा ठाकुर जी तो फिर जो कुछ बोल गया सही समय पर अगर मन नहीं कर बोलदिया बोलदिया उन्होंने अपना वक्त सब बदलिया भाई इसमें चोट ना पहुंचे और उस बोल में लमकांदा लमकांदा सच्चाई प्रगट की थी। हर अवतारी पुरुष हर महापुरुष हर कबीर जैसा संत अपने समय को 100 साल पहले सारा बनारस कह रहे हैं कबीर पागल है लोग कहें कबीर बहु राजा पूरी बाणी कभी लोग मैं पागल कहें सारा बनारस कबीर नु पागल कह रहे हैं पर बनारस वासियों को कौन बचे कोई तो बंदा जरा सियाना है बाकी तो सब पागलों की गई है सब पागल ही पर पागलों की भीड़ हो रहे एक सियाणा ढेर दे फस जाए रस्ता बनाना कठिन हो जाता है फिर वो सोली से चलता है फिर वो तत्ती तवी से बैठता है फिर वो बनवास दिया ठोकरा पाता है एक भी अवतारी पुरुष गुदाफी भाव अपने समय में कबूल नहीं एक भी नहीं हर अवतारी पुरुष अपने समय को 100 साल पहले पैदा होता है जदों होता है ठुकरा दिता जाता है जब लोगों की समझ बनती है उदो होता पीड़ा ले जाती है रविंद्र नाथ ने इसमें अपने ढंग का बयान किया वाक सत्य मंत्र सिद्धि उस पुरुष को मिल जाती है जिसकी रचना से वाहेगुरु बस जाता है प्रभु जी बसे साध की रचना साधना कर जप कर रचना से बस गया शब्द जो बैखरी थी हम बाहर नहीं जा रहा अंदर रचना से बस हम मेरा बाहर नहीं जा रहा जबान से बस गया वाहेगुरु आखदा है रचना है जी रचना बढ़ जाती बाणी जगदा है रचना है जी रचना बढ़ जाती इस साधु इमारत कहने ये भी इतना महान है असी दे दासां दे दास नानक जनका दासन दसना ऐसे पुरख ऐसे सेवक ने दासां का मैं दास चलो जबान पे वसद जबान पे वसद जबान के पाप मिट जाएंगे इंद्रियां के पाप मिट जाएंगे 10 पाप मनते हैं जीवन भर रिपीट होते हैं हजारा बन जाते हैं ये 4 पाप जबान के 3 पाप मन के 3 पाप तन के हाथों पैर इस तरह 10 लोग मनते हैं गुरबाणी च इसका बड़ा जिक्र 10 पुरब सदा दतारा 10 पुरब जो 10 पापा हरण कर देंगे नाश कर देंगे 10 पाप 4 पाप जबान दे 3 पाप मन दे 3 पाप तन दे जैसे रसना पे वस गए ते रसा लग गए जबान दे 4 पाप खत्म हो गए 4 पाप केड़े मिथ्या बोलना ठिका बोलना कौड़ा बोलना और व्यर्थ बोलना दक्ष ऐसे ही बोल रही फिर जबान दे 4 पाप मनते जबान दे 4 पाप मनते हैं व्यर्थ बोली जा रहे हैं तेरी शक्ति सारी जा रही है और करीबन करीबन बेहतर दुनिया बोल बोल के अपनी शक्ति अपने मन का घटाव व्यर्थ जबान व्यर्थ बोलना मिथ्या बोलना झूठ बोलना ठिका बोलना बोलना तो सच है पर ठिका बोलना कौड़ा बोलना ये 4 पाप जबान दे रचना से प्रभु वस गए 4 पाप खत्म जबान ठिका नहीं बोल रही मिठ बोल रहा जी हर सज्जन स्वामी मिथ्या नहीं बोलेगा कौड़ा नहीं बोलेगा व्यर्थ नहीं बोलेगा मिथ्या नहीं बोलेगा कौड़ा नहीं बोलेगा, फिका नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। रचना पावन हो गई, नाम जपत गोविंद का सूची भई रचना, जबान सूची हो गई, रचना पवित्र हो गई। पहली स्टेज है रचना पवित्र हो गई। अगर ये जगदा रहा इसकी अखा भी पवित्र हो जाएगी। इसी स्टेज इस पहली स्टेज वो रस इसी अखा के चौ निर्मल दृष्टि जन्म देगी। दो तरह की दृष्टि होनी है, दोख दृष्टि शुभ दृष्टि, हर एक दृष्टि शुभ देखना, शुभ दृष्टि हर एक दृष्टि अशुभ देखना, अशुभ दृष्टि। जैसे एक मित्र है तो उस मित्र को मैं देख रहा हूं, उस तारियां ही मैंने खूबियां ही दिखाई दे, क्योंकि मित्र है दोस्त है अपना, ऐसा नहीं है कि वह पौगण ना है। पर शुभ दृष्टि क्योंकि प्यारा लग रहा है, चंगा लग रहा है, अपना है, दोस्ती है, पुत्र है, मित्र है, राह है, तो हम मन को वो शुभ देखना चाहता है, शुभ दृष्टि। मित्र बिच सबको शुभ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि वह शुभ ना हो, अशुभ अपना नहीं देखना चाहता मित्र। किसे कारण उस नाल झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मित्रता दुश्मनी बदल गई, दृष्टि भी बदल गई, दो बजे हूं वो सब औगण ही औगण दिखाई, एक भी बोल इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई गुण नहीं है, हूं दृष्टि गुण नहीं देखना चाहते, दो दृष्टि कहने शुभ दृष्टि गुण ही गुण उस दिखाई नहीं रहे सन, ऐसा नहीं कि वे अवगुण नहीं सन, अवगुण दृष्टि देखना नहीं चाहिए, शुभ दृष्टि नहीं देखना चाहिए। हर एक शुभ वेखते जाओ, वेखते जाओ, वेखते जाओ, एक दिन भगवान नाल संबंध जुड़ जाता है। हर एक अशुभ देखते जाओ, देखते जाओ, एक दिन शैतान नाल संबंध जुड़ जाता है। दो दृष्टि वाला मनुख शैतान जो भी मित्र से शुभ दृष्टि सब कुछ शुभ दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि वो अशुभ नहीं थी, है दृष्टि शुभ। एक होर कारण करके भी दृष्टि मैली होगी, वासना करके, लोभ करके। समाज के कानून का दरिया या मनक हो सकता है, वे हाथ च और ना हो, दृष्टि चो अखा चो कि अखा खुल भी है चोरी करेंगे, ना कानून पकड़ दे ना समाज, कोई कोई मनुख पकड़ सकता, किसी किसी भी पकड़ सकता। हो सकता है जिसम ने दुराचार ना किया हो, अखा से दुराचार दूर तक दुराचार, अखा नु संस्कृत दे लोचन कहने, लोचन अखा दौड़ दो, लोचन पेखा लोचन, ये लोचन ने ते तकड़ी नु लोचा कहने, लोचा लोचन लोचा, ये लोचा किसे दे रूप से टिक जाए, किसे दे धन से टिक जाए ते हटे ही ना, उसका ही मां उसे लोचा कहने, संस्कृत भाषा लोचन लोचा लोचा दाल है। यदि दृष्टि दुराचारी, यदि दृष्टि चोर है, की होया हाथ चोर नहीं, यदि अखा चोर है, की होया इसका तन दुराचारी नहीं, यदि अखा दुराचारी। लोचन लोचा लोचा रसना से जैसे प्रभु वसदा है, रचना सुची हो जाती है, दृष्टि शुभ हो जाती है, शुभ दृष्टि। ऐसा मनुष्य सब पास शुभ शुभ देखता है, अशुभ नहीं देखता। इधर मतलब नहीं कि अशुभ नहीं है, जब मेरे नाल कोई गल कर रहा फलाना इंजय फलाना इंजय फलाना इंजय, मैं उन्होंने कहना उनका पुरखा वे खूबियां भी होंगी, ऐसी गल नहीं। अपनी दृष्टि बद, अपनी दृष्टि बद, दो दृष्टि नाल देखेंगे, होर अखा मेरिया आदि जाएगी, होर मैं मैदान दरवाड़ा जी कर, जप दे नाल पहले जबान सुची होनी है, प्रभु के नाम का रास्ता होंगे, फिर दृष्ट शुरू होगा। ये पहली स्टेज, ऐसा मनुख जो कुछ देखेगा शुभ देखेगा, ऐसा मनुख मिथ्या नहीं बोलेगा, फिक्का नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा। नाम जपत गोविंद का सूची भई रत्न, जप जारी है और ये जप भी धुन हृदय तक पहुंच गई। ऐसा मनुख अनाहत नाल सुनेगा, सारा संसार शब्द तो आया है ना, किड़े शब्द तो जो अनाहत है, दो तरह का शब्द होना है, आहत आहत कहने चोट, जो दो चीजों के टकराव तो शब्द पैदा हुए उन्होंने आहत कहते हैं, कि जो सीधा प्रकाश परमात्मा तो शब्द आया है उन्होंने अनाहत कहते हैं, परमात्मा व्यापक है उसका शब्द व्यापक है, उस शब्द नाम कवि का पिता ओहंकार कहने ने, गुरु नानक ओहंकार कहने ने, कबीर ओहंकार कहने ने, शब्द ये धुनी व्यापक, ऐसे मनुख में सुनाई देने लग पे, वो आवाज संगीत बनेंगे गीत बनेंगे, अगर वो किसी को सुनाई दे रही है उसके बोलों में फिर वो कथनी परमात्मा की आवाज होगी, परमात्मा का संगीत होगा, परमात्मा का गीत होगा, भागवत गीत आएगा, सब तीर्थी गीत होगा। रविदास गणना के दुतियां दुतियां का ज्ञान है, पर अनाहत नाल जब सुन लगे है तो रसना तो कविता भी निकली है, संगीत भी निकले, सारी बाणी वो रागा ने और कविता ने कितों सीखे कितनों भी नहीं, अनाहत सुने है, अनाहत गीत संगीत बन के बार प्रकट होता है, ऐसा हो जाता है। इन्हों अखा ने दो चार मनुख ऐसे देखे जो हर रोज अनाहत सुनते हैं, बड़े मस्त बड़े मस्त, ये ठीक है हम सत्संग तो हट गए क्योंकि हम जितने बैठ गए सत्संग ही सत्संग, उन्होंने सिख सरदार बहादुर सिंह कानपुर करोड़ों का व्यापार से एलगन मिलती एजेंसी से कपड़े सब कुछ छड़ छड़ा गए, चले बटेरा सत पीढ़ियां खा लेंगे अठे पैर उसे ढूंढ देखना सकते। मैं फिर अर्ज करा ऐसा मनुख फिक्का नहीं बोलेगा, कौड़ा नहीं बोलेगा, व्यर्थ नहीं बोलेगा, इसे नहीं बोलेगा, ऐसे मनुख की दृष्टि शुभ होगी, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ शुभ होगा, शुभ दृष्टि। ध्यान अंदर चला गया है, धुन अंदर चली गई है, पसंदी तक पहुंची है, ऐसा मनुख फिर अनाहत नाल सुनता है, उसे मस्त रहता है, पर अजय वाच पे रहेंगे धुन धुनी तक पहुंचे, थोड़ा जहां फासला है, अगर जप जारी रहे तो इन धुन धुनी नाल टकरावे तो धुनी पूरी खुल जाए, मन की मौत हो जाती है, जबान वाहगुरु वाहगुरु करते ही नहीं, अंदर ही चलन लग पैंदा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना, पहले पहले दिन जब यह अवस्था बन गई है, पहले दिन मुठियां बंद हो गई, गंदियां बजदियां ने, कमड़ी छिड़ गई है, घर वालों घबराहट हो सकती है, इस तरह की पहली अवस्था बनी मोहम्मद साहब, उन्होंने बेगम हजरत खदीजा उम्र में 15 साल वड्डी सी, शायद आपको पता होवे मोहम्मद साहब पहले उसके मुलाजम सन, उसका समान जाके बसरे बेचते सन, सीबिया मुल्क जाके बेचते सन और बगदाद में जाते थे, वापसी के पाई पाई का हिसाब ठीक लेंदे सन, उन्हों की ईमानदारी शराफत और बंदगी, नौकर से मालकन का यह रिश्ता पति पत्नी च बदल गया, सैनी बहुत सी, जिस दिन यह अवस्था बनी गोपा चढ़ोस जाते होंगे सन, उठे किए बन गए, वापस आए कमड़ी चिड़ी गंदियां वजन बेकार, लिटाया खलीजा ने कंबल पे कंबल पाया, पर कमरे कंठ छोकर आयता निकलिया, आयता निकलिया, संगीत देश निकलिया, गीत देश निकलिया। खदीजा दंग होके कहती है हजरत के बोल पड़े ने, मोहम्मद के बोल पड़े ने। मोहम्मद कह लगे खदीजा तू ठीक समझे हैं, मोहम्मद से चुप कर गए, पता नहीं खुदा की बोल, पता नहीं खुदा की बोल। आपों बोल ना जानता हो कहना सब हुक्माओ जी हो। गुरु नानक देव जी कहें मैनू तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो बोलना चुप कर गया, पता नहीं खत्म की बोली जाए। जैसे मैं आवे खत्म की ना नहीं, पैसा गरीब ज्ञान होगा मैं नहीं बोल, चुप कर गया, पता नहीं खत्म की बोल जाए, पता नहीं परमात्मा की बोल जाए। ऐसे पुरुष के बोलों में खुदा परमात्मा खुदा नाम जुड़न का वसीला है, क्योंकि आमदे सीधे खुदा तो है, आमदे सीधे परमात्मा। एक दिन वकरी जब हालत बनती है तो घर वाले घबरा सकते हैं। शेख सादी की मां भी घबरा गई, तबीब न बुला लिया कि पता नहीं मेरे बच्चे को की हो गया, दिन भर का कुछ खादा नहीं सी, मस्त जरूर बने आ रहे, कमरी से बंद हो गई पर बोलते नहीं, अपनी मस्ती से है। तभी हाथ देखता है, नवस देखता है, मत्था देखता है, जबान देखता है, अखा देखता है। शाही तबीब से बुढ़ी मां को कह लगा तेरे पुत्र को कुछ भी नहीं, ठीक दिल की धड़कन ठीक है, स्वस्थान की चाल ठीक है, जो सारा तबीबी का ढंग है उसके मुताबिक एक तंदुरुस्त है। बुढ़ी मां कह लगी फिर मैं कोई होर तबीब लिया, दिन भर का कुछ खादा नहीं, मेरे नाल बोलता नहीं, पहले रोई जाता सी, फिर कंबड़ी फिरी, दंदियां वजदियां सीया, तू कहना कुछ भी नहीं, तेन कख भी नहीं आता, शाही तबीब बनया पे एक चोट लग गई। एक बिरग मां ने जब ऐसा आख्या है चोट लग गई। तबीब ने फिर जब नवज देखनी शुरू की थी तो हूं सादी बोले अस्तरे बारी ने मन बर खैर आए ना दां तबीब दर्द बनदा इश्क रात दारू बजुर दीदारे ने छड़ मेरी मां तेन कख नहीं पता। दर्द दे मारे आया इश्क दे मारे आया का दारू खुदा का दीदार कि चक्कर चो मैं ठीक वैद बुलाया वैद भी पकड़ डंडोले मां ये भोला वैद न जाने फर्क करे जे खेड़ कुछ हो जगत की समझ दिच नहीं आ। पहली पहली दफा ऐसे मनुख के कंठ तो जड़े बोल निकलन गए हो सकता है कर्म कांड नाल ताल मिलना खा, हो सकता है समाज की प्रथा नाल मिलना खा, हो सकता है राजनीतिक ढांचे नाल मिलना खा। इसे वास्ते इस तरह के सारे भगत सन और इस तरह के अवतार ठुकराए गए जिहड़े संत अज पूजे जा रहे हैं। मैं दावे नाल कह सकता 99% संत नहीं ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर संत होंगे तो ठुकराए जा रहे क्यों, आम समाज नाल उन्हां दी क्रिया बोल मेल नहीं खाने, उन्हां दी तरजी जिंदगी मेल नहीं खाने। गुरु अमरदास जी आप कहते हैं भगतां ते संसारियां जोड़ करे मनसूर। एक सूफी संत होया अज किधर इस तरह की मस्ती छाई के बोल निकले आनंद आनंद जुनैद उसका गुरु से उसने इसको समझाया कि करिया कर खेल बन गए। आनंद हक का मतलब मैं सच हो गया, मैं सच का रूप हो गया। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछा, नामे नारायण नहीं नाम के लीन भय गोविंद सिंह जो पानी सिंह पाने अनरा हक कहने सच, मैं सच हो गया, मैं सच हो गया, झूठ खत्म हो गया। पसंद आनंद आनंद जो नरेंद्र ने आख्या है मेरे बच्चे बड़ी सोहनी अवस्था बनी है और मैं तेनों सिखाया से मेरी नहीं बने तो अगे लगे कानपुर के बहादुर सिंह को देख के मैं ईरखा कई दफा पैदा हो गई क्योंकि सन 58 मैं उन्होंने आख्या सवेरे 3 बजे गुरुद्वारे आ जाए मैं तो घंटा जग करके आया कर खेड थोड़े दिन ही बन गए तो मैं 30-35 साल तो जाना पाया कानपुर में देख के मैं ईरखा आती क्या मैं इस मैं उरार का उरार रह गया पहुंच गए मैं देखे तो पुरुष मौजूद बड़ी रंगी हो जाता जुनेर कहता है कि इस्लाम दे अनल हक कबूल नहीं मैं खुदा हो गया मैं सच हो गया कुफर होता है तू मेरे इस स्थान पे जाके आश्रम पे जाके ठीक बाहर ना और फिर कभी भी नहीं आखना मंसूर कहता अच्छा मुर्शिद थोड़ा हुक्म नहीं करांगा उसे रात मिस्र दे बादशाह ने कहारा दे बादशाह ने फकीरां नू दावत से बुलाया अपने घर कोई 40-42 के करीब चोटी दे फकीर उन्होंने खाने से बुलाया पहुंचे जुनैद जब जान लगा कि मंसूर नू कहंदा मित्रा है मेरे बच्चे तो भी चल रोटी से तो ही खानी है चल मेरेगा मुर्शद का हुक्म मन के चल पे 40-45 फकीर उनके विचकार बादशाह बैठा सी दस्तरखान दायरा जै इस्लामी एक ढंग होना है कितने फकीर उनके कुदरती ज्यादा गल है रब की चलनी सी परमात्मा की चलनी सी कितने रब की गल छेड़ी दूजे ने छेड़ी तीजे ने छेड़ी परमात्मा की चर्चा चल पे इतने फकीर जो बैठे जब 4-5 बंदे हैं कारोबार की गल चले ठीक कारोबारी पता चल जाए राजनीति की गल चले राजनीति मेरे को कई दफे के शब्द के अर्थ पुछते हैं फिर इन 2 मिनट बाद राजनीति की गल कर लग पे मैं कई इन्होंने शब्द के अर्थ पुछना भी राजनीति है कर भी फलाने जी किया तो फलाने इन्ने फकीर खुदा की गल चले रब की गल चली उठे बैठा से मनसो सुनता रहा उसका मुर्शद भी बोल गया जब मुर्शद बोलन लगा प्यार से उसे बोल समझ च आया फिर चोट कर गया फिर जबान चो उची उची निकलिया अनला अनला बड़ी सवा कारा रहा बादशाह कहता एक काफर तू नाल रखा है कुफर बोलना अनला जुनैद भी हैरान और बाकी फकीर भी कह लगे हाँ कुफर बोलना है उन्होंने फकीर की इतनी अच्छी अवस्था नहीं थी ज्ञानी सन साधक सन जप तप करते सन और उस अवस्था से बात करें पकड़िया गया मंसूर 16 दिन अदालत में पेश किया गया काजिया ने और बादशाह ने जो उसके सजा नियुक्त की थी काजिया ने फतवा लाया इनू पहले से सारे पत्थर मारन फिर तोली दे आनंद मैदान में लै गए जिथे सोली लेनी थी उसे खड़ा जुनैद मुर्शद वो भी दर्द का मारिया रह गया कोल पहुंचे मंसूर से कहते मेरे बच्चे मैं कोई गल कहना तू कसम चुकी थी कि मैं अनल हक नहीं कहूंगा तू मेरे नाल बह जा तू क्यों आ خدا کی قسم توڑی ایسا کیوں کیا؟ اور ہم کون دینوں پہ جاتے ہیں؟ ایسے قاضیاں دیکھے تھے بادشاہ کا ہوگا میں کر رہا میں کیوں کر سکتا؟ میں سمجھدار تو سکتے ہیں اور کوئی سچائی تو توڑیا بھی ہے. تو خدا بھی قسم چکی تھی میرے نال وعدہ کیتا سی انل حق نہیں آخا تو بھری محفل نے انل حق آخر پتہ منصور کی کہنا ہے پہلے میرے ملک سے میں قسم نہیں توڑی میں قسم کے پابند ہوں پر جب خدا ہی آخر لگ پوے انل حق انل حق تو خدا نے میں کیوں روکا؟ میں نہیں قسم توڑی میں نہیں بول رہا میں نہیں بول رہا. ایسے منوں کے اندر اناہد ناز گھومتا ہے پربھو ایسا منوں رب کا رب ہو جاتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے پنڈت سور شترپت راجا بھگت برابر اور نہ ہو چھوٹی کا دھناد چھوٹی کا گیانی چھوٹی کا دانی شترپتی راجا اور چھوٹی کا پنڈ پنڈت سورچ کرمت راجا بھگت برابر اور نہ ہوئے سارے بھگتوں کے چرنا کی روپ ہی نہیں بھگت اتنا پربھو کا روپ ہو جائے. جب سکھ نو گرو کا روپ بنا اور گرو مان نہ بتھیرے دے ہوں اپنا ہی روپ جس دن یہ پورن طور پہ جاگتا ہے یہ شبد نابی نال ٹکرانا ہے دھونی نال ٹکرانا ہے دھونی کھل جاتی ہے شریر زندہ رہتا ہے من کی موت ہو جاتی ہے من کی موت کس طرح ہوتی ہے بوند ساگر سے ترین ہو گئی بوند سے مر گئی پر ساگر ہو گئی بیج سے مر گیا پر سخت ہو گیا من سے مر گیا پر پرماتما ہو گیا ایشور ہو گیا. اس کا ست سال جو میں تیرے سامنے رکھا کیونکہ گیانی بلوندر سنگھ اور سجن متر میرے کہنے کے سارے یار بہت بہادر ہیں لائٹ ہو رہا جاؤ گے کہ میں بریکاں سے اپنی طرف لگا رہا گل ادھوری سی اور پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی میں ادھوری چڑھ کے جا نہیں ہوتی نہیں ہوتی. جس کسی شہر میں میں کوئی پرکرم آرمبھ کیتا ہے دیکھے اکثر میرے کو ادھورا ہے ادھورا ہے سوچنا داتا تیرا شبد نہیں پورا نہیں زندگی پوری ہو سکتی ہے سما پورا ہو سکتا ہے کتن شکتی پوری ہو سکتی ہے تیرا شبد نہیں پورا ہوتا کروڑا کتھا واج اپنی کتنیاں کر جان وچار مکتی نہیں دوریاں مٹ جانیا ہے بون ساگر دوریاں مٹ جاتی ہیں پتھر پرماتما من تو لوگ سروپ ہیں اپنا مول پچھان گرو صاحب کی مہاراج کے چرن بینتی ہے داتا تیری ہزوری جو بول بولے ہیں اندروں ایک من کے سنگ رکھ کے آیا تھی کہ میرے جان نال بھائی چارہ میں پانچ سات سال نہیں آیا جانا ہوں جیل سے پتھر رکھ کے آیا نہیں منگا میں میرے بول بھارت دیش میں رکھا جا رہے ہیں لوگوں کی سروت پوچھی اتنی سنکیرنتا نہیں ہے پرسوں کے میں بھرمن کر چکے ہیں کہ مجھے پتا میں تو ہو سکتا ہے ارتھان کا انرتھ بننا ہے میں دیکھ کے ڈنگ رہا اپنی طرف کوشش سکھ سکھ نہ جڑے گروارا گردوارے نہ جڑے وہ سارے دیکھے بھائی چارہ بنائے سارے بولوں توڑن کا کارن سمجھ تو پھر یہ کہنا پڑے گا ہزاروں سال کو جو منوکھ ہے سچ نہ یہ سمجھ آیا نہ سمجھنا یتن کر سدگر کو دیکھ دیں پھر میں اپنی بول جو ہر جگہ بولنا کوئی ایسا شبد جو انسانیت سچائی گرمت کی کسوٹی کے پورا نام کر رہا ہے ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜੋ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: ਕੇਲਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
4: 250-392-3874. ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ।

सो होवत विष्टाका जंत आप उसको कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे

अखिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गो

धन वंता होए कर कर बावे प्रण समान कछ संग ना जावे। जे कोई धनवान होके रखे हुए धन का मान करे तो सतगुरु जी फरमाउंदे ने इस धन विचों मृत्यु दे वेले तीले जिन्ना धन भी उहदे नाल नहीं जाएगा। बौलस कर मानख उपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश। कोई राजा होके फौजां दा मान कर लवे तो हजूर कहंदे ने पल जिने समय विच भी फौजां ते राज मद दा हंकार खत्म हो जांदा है। सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। जड़ा अपने आप विच मन और तन दा मान कर लवे बाहुबली बन के दिखावे हजूर कहंदे ने छिण विच ही ओ मिट्टी च रल जांदा है। किसे ना बदे आप हंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। जे कोई अपने हंकार विच किसे नू अपने बराबर ना समझे ता धर्मराज जी कचहरी विचो खुआर हुंदा है। गुर प्रसाद जां का मिटे अभिमान सोजन नानक दरगह परवान। गुरु साहिब फरमाउंदे ने गुरु की कृपा नाल वाहिगुरु जी का नाम जप के जे किसी मनुख का हंकार खत्म हो जावे ते अजिहे करनी दे कारण ओ प्राणी ओ गुरु का सिख वाहिगुरु जी के दर से प्रवान हो जाता है। कोट कर्म करे हों तारे सर्व पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रव

कोट कर्म करे हों तारे, जे कोई कर्म करे ते कीते हुए कर्मा दा अहंकार भी करे, शर्म पावे सगले बिरथारे। कर्म दा फल ते उसनू प्राप्त नहीं होवेगा, सगो कीते हुए कर्म उसदे बेअर्थ चले जाणगे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनेकां तरीकियां नाल समाधियां ला के जे शरीर राही कोई तपस्या भी करे ते हंकार विच करे, हजूर कहंदे ने नरक सुरग फिर अवतार। नरक सुरगां दे विच ओ जावेगा, जन्म मरण विच भटकेगा। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगे को कैसे गवै। अनेकां यतन करन नाल जे मन नूं अपने स्वाय स्वरूप आत्मा दा ज्ञान नहीं होया, तां दसो इहा जिहा जीव वाहिगुरु जी दे दरगाह विच किवें प्रवान होवेगा। आपस कौ जो भला कहावै, किसे भलाई निट ना आवै। अपने आप लई जो भला चाहुंदा है, दसो भलाई उहदे किवें कोले आ सकदी है। सर्व किरें जाका मन होए, कहो नानक ताके निर्मल सोए। सतगुरु जी फरमाउंदे ने जे कोई संगत विच आके वाहिगुरु जी का नाम जपे, साध संगत दी प्रेम नाल सेवा करे, ता उस गुरमुख दी सौ निर्मल हो जांदी ए, शोभा वड्डी हो जांदी ए। जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसका सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्व जौन मैं फिरता।

साधन कर्म राए देश जाए प्रभ कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हाँ छूटे। जब लग जाने मुझसे कुछ होए जदों ये अपने आप नु ही करता पुरख मन लेंदा है तब इसको सुख नाही कोई। फिर कीतिया होया कर्मा दा फल सुख रूप करके इस नु प्राप्त नहीं हुंदा है। जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जौन मैं फिरता। जदों ये जानदे कि मैं ही कर सकदा हाँ मेरा कीता ही सब कुछ हुंदा है तदों हजूर कहंदे ने उते फिर गर्भ जूनी विच रहेगा आवेगा जावेगा पाव सागर विच ही रहेगा। जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत। मन करके जदों किसे नू कोई अपना मन लेंदा है जां फिर पराया मन लेंदा है इस कारण इसका मन एकाग्र चित नहीं हुंदा है ते मन डोलदा ही रहिंदा है अडोल होके नाम दा सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राए देश जाए। जिन्नी देर तक मन विच माया दा लोभ है या माया नाल इसका मोह है उन्नी देर तक कर्म धर्म विच रहेगा ते धर्म राज दी कचहरी विच सजा भुगतनी पवेगी। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। गुरु साहिब फरमाउंदे ने जे वाहिगुरु दी कृपा हो जाए वाहिगुरु जी दा नाम ए जपे ता बंधन मुक्त हो सकदा है। इउं ही सतगुरां दी कृपा नाल हौं तो रहत होके वाहिगुरु दे दर ते बख्शिया जावेगा। सहज खटे लाका उठतावे त्रिप ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या कै करे। न त्रिपतावे

नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। धन जो कमाउंदा है, कमाई विच हजारां दा फायदा हुंदा है, फिर ये लखां दी आस करदा है, लखां दा फायदा हुंदा है, फिर ये करोड़ां दी आस करन लग पैंदा है। सहज खटे लाका उठता है, तृप्त न आवे, माया पछे पावे। इउं मन विच तृप्ती तां माया नाल नहीं आउंदी, पर माया दी तो इस दे मन विच लगी रहिंदी है। अनक भोग बिखिया कै करे, न तृप्तावे खप खप मरे। खट्टी हुई माया दे नाल अनेकां तरीकियां दे ए भोग भोगदा है, ते मन नूं तृप्ती नहीं आउंदी, बार बार खा खा के देही नूं खपाई जांदा है। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। गुरुदेव फरमाउंदे ने, गुरु अर्जन साहब, बिना संतोष कीतियां मन कदे रजदा नहीं, मन नूं कदे तृप्ति नहीं आउंदे, ते संसार दी यात्रा सुपने दे मनोरथ वांगू है, जो बिरथे ही चले जांदे हन। नाम रंग सर्व सुख होए, बड भागी किसे प्राप्त होए। वाहिगुरु नाम जपण नाल मन जदों नाम रंगण विच रंगिया जांदा है, हजूर फरमाउंदे ने तदों ही इस मन नूं सुख हुंदा है। पर ए नाम दी मस्ती, नाम दा रंग ते किसी करोड़ां विचों किसी विरले नूं ही प्राप्त हुंदा है। करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। ए मनुख, ए गुरु के सिख, सतगुरु जी फरमाउंदे ने, वाहिगुरु जी आप करता पुरुष ने कि करावण हारे ने, इसलिए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का ही नाम जपते रहो। करण करावण करण हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप

वाहेगुरु जी ने एक खेड तमाशा अपने मौज विच बनाया है, सब दे कोले भी आप हैं, सब विच रचे हुए भी हैं, सब तो दूर भी हैं, भाव निर्लेप भी हैं। बूझे देखे करे बबेक, वाहेगुरु जी आप अंतरयामी हैं, जिया दे कर्मा नू वेखदे ने ते कर्मा दा हिसाब भी आप ही करदे ने। आपे एक आपे अनेक, वाहेगुरु जी आप एक रस विच भी हैं ते अनेकां जूना विच अनेकां जीवां विच उहनां दा अपना विस्थार है। मरे न बिनसै आवे ना जाए, नानक सद ही रहा समाए। गुरु साहिब फरमाउंदे ने वाहिगुरु जी ना जन्मदे ने, ना उहनां दा अंत हुंदा है, ना ओ आउंदे ने, ना ही ओ जांदे ने, ओ तां इक रस ने, सभना जीआं विच सब थाई सदा ही समाए हुए हन। आप उपदे

आप उपदेश से समझे आप ही उपदेश करने वाला है ते जिया अंदर ओ आप ही समझन वाला ते समझावन वाला है। आपे रचिया सबके साथ अपना आप सारिया दे विच ओने रचिया होया है रखिया होया है। आप किनो अपन विस्तार सब कुछ उसका ओ करने हार। आप ही वाहिगुरु जी ने अपना विस्तार कीता है एक तो अनेक होए ने ते आप ही ओ इस जगत दे करता पुरुष ने रचन हारे ने। उससे भिन्न कहो किछ होए थान थिनंतर एक कैसो विखो ते सही कोई थाओ ऐसा नहीं जिदे विच ओ आप ना होन। ताते हर जगह हर वेले हर समय आप ही परमेश्वर सबनी थाई समाए हुए ने। अपने चलत आप करने हार कौतुक करे रंग अपार। जगत का तमाशा अपनी मौज विच बनाउंदे ने अपने कौतक ओ आप ही करने हारे ने। कौतक करे रंग अपार बेअंत रंगा विच उना ने अपने कौतक कीते हन। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए। वाहिगुरु जी दा पसारा सारिया मना विच है ते सारे ही मन जड़े ने

अश्वदी संत के रूखन आर्जा कटे, संत के रूखन जानते नहीं छुटे, संत के रूखन सुख सब जाए, संत के रूखन नरक में पाए, संत के रूखन मत होए मलीन, संत के रूखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के रूखन थान प्रश होए।

प्रणमाये संतन के रूख तृष्णा में जले, संत के रूखन सबको छले, संत के रूखन तेई सब जाए, संत के रूखन नीच नीच आए, संत लोखी का ठाव कोई ना है, नानक संत पाए ताओए भी गत पाए, संत के दुखन से मुख पवे, संता की निंदा करने वाला जो है वो मानसिक तौर से टेढ़ा हो जाए, गलत विचारा वाला हो जाए, मन की मत करदा होया दुरमत नु धारण कर लेंदा है। संतन के दुखन काग जो लवे, जिवें कां विष्टे विच उंज मारदा, इवें संतां दा दोखी निंदक बनदा है। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुगद करन मुंह काले, तिना नंदका नरके कोर पवन। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संतां दे दोखियां नूं मौत तो बाद सर्प जोन प्राप्त हुंदी है। संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतां दे दुखियां नूं टेढ़ियां रेंगण वालियां जूनां प्राप्त हुंदियां हन, जो अति दुखदाई हुंदियां हन। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत दे दुखी सदा तृष्णालु रहिंदे ने, तृष्णा दी अग सदा प्रचंड रहिंदी है, मन उन्हां दा कलेश युक्त रहिंदा है। संत के दुखन सब को छले, संतां दे दुखी गलत विहार करदे ने, माया विच छल वल करदे हन। संत के दुखन तेई सब जाए, जो मान समान जीव नूं प्राप्त होया हुंदा, संतां दे दोखियां नूं ओ खत्म हो जांदा है। संत के दुखन नीच नचाए, संतां दे दोखियां नूं नीच तो नीच होण दा अपमान प्राप्त हुंदा है। संत दोखी का थां कोई नाहीं, समाज विच उन्हां मनुखां दा जो संतां दे दोखी हन कोई थाव नहीं रह जांदा, कोई मान नहीं रह जांदा है। नानक संत भावे तां ओए पी गत पाहे, गुरदेव फरमाउंदे हन जे संतां दे मन नूं पा जाण ऐसे दोखी ऐसे निंदक, तां भी ओह गति नूं प्राप्त हुंदे ने, मोक्ष नूं प्राप्त हो जांदे ने। संत का निंदक मां अताई, संत का निंदक खिण टिकणा पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक गृहिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्वरोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का निंदक मां अताई, संत दा दोखी महा अशांत हुंदे, मन करके ना उन्हूं दिन विच चैन हुंदे, ना रात्रि चैन हुंदे, वल छल करके माया कमाउंदा है। संत का निंदक खिण टिकण ना पाई, संत दा दोखी किसे थां भी विश्राम नाल शांति भाव नाल नहीं बैठ सकता है। संत का निंदक महात्यारा, संत दा निंदक जड़ा है ओ महात्यारा है, भाव दूजे नूं दुख देने वाला बन जांदा है मनसा वाचा कर्मणा करके। संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत दा निंदक जड़ा है उसनूं तां परमेश्वर भी नहीं अच्छा समझदा, परमेश्वर वल्लों ही उसकी एक किरत बनी हुंदी है कि वह महानिंदक बन के परमेश्वर वल्लों बेमुख हो गया हुंदा है। संत का निंदक राज ते हीन, संत दा जड़ा निंदक है दोखी है ओ मान अपमान तो हीन हुंदा है, भाव उसका कोई मान नहीं हुंदा। संत का निंदक दुखियार दीन, संत दा दुखी संत दा निंदक जो है ओ दुखिया भी हुंदा है ते गरीब भी हुंदा है।
संत के निंदक को सर्व रोग, सारे ही रोग उस संत के निंदक नु व्याप जांदे हन, मानसिक रोग शारीरिक रोग। संत के निंदक को सदा वियोग, संत दा निंदक सदा वाहिगुरु वालों वियोगी ही रहिंदा है, मानसिक तौर से दुखी ही रहिंदा है। संत की निंदा दोख में दोख, संता महापुरुषा की निंदा करनी अपने आप विच बहुत घटिया काम है, बहुत महापाप है। नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख, जे संता महापुरुषा नु पा जावे ता ऐसा प्राणी जो अति निंदक है, दोखी है संतां दा, वो भी बख्शन योग हो जांदा है। संत का दोखी

अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख से चरे, संत के दुखी को नाई ठाओ, नानक संत पावे तलय मिलाए। संत का दुखी सदा अपवित्र, संत का निंदा करने वाला सदा मन करके मलिन रहिंदा है। संत का दुखी किसे का नहीं मिले तो, संत का दुखी संत का निंदा करने वाला किसे दा मित्र नहीं हुंदा, किसे दा अपना नहीं हुंदा। संत के दुखी को डान लग गए, संत के दुखी संत का निंदक जो है वो डनिया जांदा है धर्मराज के दरबार विच। संत के दुखी को सब त्याग गए, सारा समाज संतां दे दोखी नूं मनमतियां नूं निंदकां नूं त्याग देंदा है, भाव कोई मान नहीं मिलता है। संत का दोखी मां अंकारी, अज्ञान नहीं होण करके संत दा दोखी जड़ा है वो महाअहंकारी हो जांदा है। मैं करदा है ते अपने जिहा किसे नूं नहीं समझदा। संत का दोखी सदा विकारी, इस तरह संत की निंदा करने वाला जो संत का दुखी है वो सदा विकार विच ही रहिंदा है। संत का दुखी जन्म मरे, संत का दुखी निंदक आवागमन विच ही रहिंदा है, जन्मदा ते मरदा है, मरदा है ते फिर जन्मदा है, इसे तरह जन्म मरण के चक्कर विच रहिंदा है। संत की दुख ना सुख ते चरे, संतां दा दुखी जड़ा है ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਛਾਓ, ਸੰਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਆਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦੁਖੀ ਐਸਾ ਨਿੰਦਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਤੇ ਟੂਟੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਭੂਜੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। संत के दोखी की जड़ किछ नाए, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दोखी को अवर ना राखण हार, नानक संत भावे तां लै उवार। संत का दोखी अध बीते टूटे, संतां दा दोखी अपने जीवन में किसी भी पूर्णता नूं प्राप्त नहीं हुंदा है, किसी भी मकसद नूं ओ प्राप्त नहीं हुंदा है। संत का दोखी किते काज ना पहुंचे, संतां दे दोखी दा कोई भी कार्य कदे भी पूरा नहीं हुंदा है। संत के दोखी को ध्यान भरमाई है, संत दा दोखी संत दा निंदक अज्ञानी हुंदा है, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਉਂ ਸੰਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ ਏ, ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ,
नानक संत भावे तां लै उबार। इहा जे भव सागर विच दोखी नूं डुबे होए नूं जे कदे संत महापुरश चाहुण ते उन्हां दा वी उधार हो जांदा है। संत का जोखी इउं बिरलाए ज्यों जल भिउण मछड़ी तड़फड़ाए। संत का जोखी भूखा निराजै ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै। संत का जोखी छुटे अकेला ज्यों गुआर तिल खेत माहे दोहेला। संत का जोखी धर्म ते रहत संत का जोखी सदन मिथ्या कहत। किरत निंदर का तुर ही पिया नानक जो इस पावे सोई थिया। संत का दोखी इउं बिरलाए संतां दा दोखी संतां दा निंदक इउं विलकदा है ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। जिवें मच्छी पानी चों कढ दित्ती जांदी ए ते तड़फ के प्राण त्यागदी ए संतां दा दोखी जड़ा है ओ इवें तड़फदा है। संत का दोखी भूखा निराजै संत का दोखी सदा अतृप्त रहिंदा है। मन करके ते तन करके कदे रजदा नहीं शांत नहीं हुंदा है। ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै जिवें अग्नि बालन तो रजदी नहीं इस ही तरह संत दा जिहड़ा दोखी है ओ माया दे गफे प्राप्त करन नाल भी अशांत ही रहिंदा है। संत का दोखी छुटे अकेला संत दा जिहड़ा दोखी है निंदक है ओ कलम कला हो जांदा है। ज्यों बुआर तिल खेत माहे दोहेला जिवें पके होए खेत विच तिल दा बूटा सड़िया होया है हुंदा है काश्तकार वढ़न वेले उनूं इकलियां छड देंदा है। संत का दोखी धर्म ते रहत संत दा जिहड़ा दोखी ए निंदक है ओदे मन विच कोई वाहिगुरु लई प्रेम श्रद्धा नहीं हुंदी। संत का दोखी सद मिथ्या कहत संत दा दोखी निंदक सदा झूठ ही झूठ बोलदा है। किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई थिया। हजूर कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब महाराज भई ए निंदक दा किरत इवें तुरों ही पिया है वाहिगुरु जी ने भी कुछ ऐसा मंजूर है पर जे संत भावे तां एहा जा निंदक भी पवित्र हो सकता है एहा जा निंदक भी पाप सागर तो पार उतर सकता है। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी को दरगह मिले सजाए।

संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए। संत का दोखी निंदक मानसिक तौर से पूरे मन वाला नहीं रह जाता, पूरा ज्ञानवान नहीं रह जाता है। संत के दोखी को दर गए मिले सजाए। संत का दोखी जड़ा है, निंदक जो है, उनु सत दी दरगाह विच सजा ही मिलती है। संत का दोखी सदा सहकाई है। संत का दोखी ना मरे ना जिवाई है। संतां दा दोखी सदा सहकदा रहिंदा है। जिवें कोई दुख विच ना मर सकदा होवे ना जी सकदा होवे, इहो जी इलाज बीमारी लग जावे जिदा ना ठीक होण दा कोई प्रबंध होवे, ना मृत्यु ही हो सकती होवे। इस हालत विच जो जीव दा सहकना है, हजूर कहंदे ने संत दा दोखी इस तरह ही सहक सहक के प्राण त्यागदा है। संत के दोखी की पुजे नासा। संत दा जड़ा दोखी है, निंदक है, ओरी कोई भी आस पूरी नहीं हुंदी। संत का दोखी उठ चले निराशा। ओ जीवन विचों निराश होके ही प्राण त्याग देंदा है। संत के दोख ना त्रिष्ट है कोई। संत का जड़ा दोखी है ओ ऐसे स्वभाव वाला हुंदा है कि सदा सदा सदा सदा स्थिर नहीं रहिंदा, जन्मदा रहिंदा है ते मरदा रहिंदा है, आउंदा रहिंदा है ते जांदा रहिंदा है, दिन विच भी अशांत रहिंदा है ते रात्रि दे समय भी अशांत ही रहिंदा है। जैसा भावे तैसा कोई होए। जिस तरह उन्हूं पाया है उवें ही उन्हें कर्म कर लिया है। वाहिगुरु जी जिवें ही चाहुंदे ने जीव नूं उवें ही रखदे ने। ओही कुछ हुंदा है जो कर्मां दे अनुसार भागां विच लिखिया होया हुंदा है। पया किरत ना मेटे कोए। तकदीर जो लिखी हुई है कर्म दे अनुसार फल तो उसनूं मिलना ही है। जीव कर्म करन स्वतंत्र है, फल दे भोगण भी स्वतंत्र नहीं है। फल ते वाहिगुरु दे अपने ही हथ विच हन। ये जिहड़े निंदक ने, ये जिहड़े दुखदाई ने, संतां नूं दुख देण वाले, उन्हां दा भाग ही ऐसा ही लिखिया हुंदा है कि उन्हां निंदा करनी ही है, उन्हां संतां महापुरशां नूं दुख देना ही है। हजूर कहिंदे ने इह तां उन्हां दी ऐसी ही किरत है जो उन्हां दी शुरू तों भागां विच ही लिखी हुई है। इन्हां भागां नूं कोई बदल नहीं सकदा। हां इक गल हो सकदी है, नानक जाने साचा सोए। जे वाहिगुरु जी आप कृपा कर देन तद उन्हां दी तकदीर बदल सकदी है। पर इस वेले तां वाहिगुरु जी ही जैसा चाहुंदे हन। जी दी उदां दी बुद्धि दा प्रकाश हुंदा है ते मनसा वाचा कर्मणा जीव ऐसे ही कर्म करदा है जिस दा फल फिर दुख रूप विच ओ भोगदा है। सब घट दिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, जिसे ते आवो सास ग्रास। सब

जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सब कट किसके ओ करने हार सारिया कटा विच वाहिगुरु जी आप वसदा है ते सारिया मना विच वाहिगुरु जी आप जो चाहुंदा है ओही कराउंदा है सदा सदा तिस को नमस्कार तांती प्यारिया ने उस वाहिगुरु नु सदा सदा नमन ही कीता है प्रभ की उस्तद करो दिन रात वाहिगुरु जी की उस्तद करो वाहिगुरु जी का नाम जपो दिन और रात जपो चौबीसो घंटे जपो स्वास स्वास जपो जिसे त्यावो सास गिरास सह लेंदिया भी रोटी पानी खांदिया भी सह बार कटदिया भी सास गिरास वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का नाम जपो ते वाहिगुरु जी का आसरा लेके मन करके इस तन विच रहो जी सब कुछ वरते किसका किया वाहिगुरु जी जो चाहते हैं ओही कुछ होना है इसलिए वाहिगुरु जी रजा नू मिठिया करके मनना ही गुरसिखा का धर्म है जैसा करे तैसा को थिया जिवें वाहिगुरु चाहते ने जिवें जगत नू चलाउंदे ने इस जगत ने उवें ही चलना है इसलिए वाहिगुरु जी की रजा दे विच रहना ही सब तो अच्छा है तेरा पाना मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे आपन खेल आप करने हार सब जिया विच करता पुरुष अपना खेल आप ही करदा है आप ही करदा है आप ही करावन हारा है दूसर कौन कहे विचार वाहिगुरु जी की करनी दे बारे कोई दूजा विचार नहीं दे सकदा ना कर सकदा है जो वाहिगुरु जी करदे हन ओ सत ही करदे हन जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे जिससे वाहिगुरु जी आप कृपा करदे ने उन भगती दान देंदे ने अपने जन को भगती दान देवे पूर्ण पुरख विदाता वाहिगुरु जी जिससे बख्शिश करदे ने उनू अपनी भगती विच लाउंदे ने बड़ भागी नानक जन से गुरु साहिब फरमाउंदे ने ओ जन ओ भगत वड्डियां भागां वाला हो जांदा है जो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का नाम जपदा है।

सुख होए, किसका नाम रख कंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन ना लागे कोई। गुरु अर्जन साहिब महाराज फरमाउंदे ने, ऐ सियाणे पुरशो, ऐ ज्ञानियो, ऐ श्रेष्ठ पुरशो, वाहिगुरु जी का नाम सिमरो। वाहिगुरु जी का नाम सिमरन करने वास्ते असीं मनुख जन्म विच आए हां। वाहिगुरु नूं अपने मन विच रखो, बाकी दियां आसां मंगां सब छड्ड देवो। वाहिगुरु जी का सिमरन जिन्हां प्यारियां ने अपने मन विच रखिया है, उन्हां दे शरीर का दुख ते मन का भरम दूर हो गया है। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सजान, ऐ मनुख तू मनुख दा आसरा ना मन विच रखी, के वाहिगुरु जी दा ही आसरा मन विच रखी। देवन को एक है भगवान, सब जियां नू सब घटां दे अंदर प्रित पालना वाहिगुरु जी आप ही करदे हन। जिस कह दिए रहे अगाए, वाहिगुरु जी जदों मनुख नूं देंदे ने ते मनुख संतुष्ट हो जांदा है, रज जांदा है। बावरना तृष्णा लागे आए, फिर मन विच कोई तृष्णा नहीं रह जांदी, क्योंकि तृष्णा ही मन नूं वड्डा रोग लगा है। तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरन मनो विस्तारिया। ए तृष्णा किसी विरले दी ही बुझदी है। तृष्णा कारण मन बहुत अशांत रहिंदा है। वाहिगुरु जी का नाम जपियां ही तृष्णा शांत होंदी है। ताते श्रेष्ठ पुरशो, ज्ञानियो, प्यानियो, बच्चियो, प्यारियो, गुरु साहिब फरमाउंदे ने, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, दिन और रात जपो, स्वास स्वास जपो, उठ बैठ सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। मारे राखे को आप, जीवन देन वाला ते जीवन ले जान वाला, भाव मारन वाला ते रखन वाला, ओ परमेश्वर आप ही है। इसलिए किसे तो पै मत खाओ, ना किसे नू पै दियो। जीवन ते वाहिगुरु दे अपने हाथ विच है। मान के इतना ही हाथ इस मनुख दे हाथ विच, जीवना नहीं है, ना जन्मना इस दे हाथ विच है, ना मृत्यु इस दे हाथ विच है। जन्म हो जाना, मृत्यु हो जानी, ते जीवन जो है स्वास्था ते निर्भर है, ओ वाहिगुरु जी दे अपने हाथ विच है। इस मनुख दे हाथ विच कोई वस्तु नहीं है। जिसका हुक्म बूझ सुख होए, हे मन जे तू सुख चाहना है ते वाहिगुरु जी का नाम जप। वाहिगुरु जी का भाणा मिठा करके मन, वाहिगुरु जी नू चित विच रख, वाहिगुरु जी का आसरा मन विच रख, वाहिगुरु जी की बाणी पढ़िया कर, वाहिगुरु जी के नाम का उच्चारण करिया कर, शुक्र करिया कर, शुक्र करिया कर। तैनू मनुख जीवन दिता है, तैनू रसना लाई है वाहिगुरु नाम जपण दी, तैनू अखां लाईया ने जिद नाल वाहिगुरु दा दीदार हो सकदा है, तैनू कान दिते ने तो वाहिगुरु दा नाम सुन सकदा है। तिसका हुक्म बोझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पर होए, राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई, जय सिमरत संकट मिटे दर्स तुहारो होए। वाहिगुरु जी दा नाम मन करके जपदियां जपदियां जपदियां जपदियां वाहिगुरु जी दा नाम हिरदे विच हिरदे गम हो जांदा है। सदा सदा वाहिगुरु जी दे नाम दी लिव लग जांदी है। दिन और रात मन जाग जांदा है, सुत्ता होया अज्ञानी मन ज्ञानवान हो जांदा है, ते मन वाहिगुरु जी दा आसरा लेके नाम जपदा जपदा अंतो गतवा वाहिगुरु जी दे विच ही समा जांदा है। मन मंदर तन वेश कलंदर, काटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस है, बौर जन्म ना आवा। वाहिगुरु जी का मंत्र मनखिया राही है,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਜਾਓ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰੋ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਸਿਮਰੋ, ਚੌਵੀ ਸੌ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

अच्छा आचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छाड़ की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाय। श्लोक। जोर जुलम फूले कनो, काची देह विकार, आऊ बुद्ध बंधन परे, नानक नाम छुटार। पौड़ी। जज्जा जाने हो कछुआ, बांध्यो जो नलनी प्रम सुआ, जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता, व्यापारी बसबा जो फिरता, साध संग

कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाद पौड़ी। छज्जा चूरन मिटे तुम्हारो, राम नाम से कर व्योहारो। चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसमल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यत्न करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत। जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत पौड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात ए हेत। गणती गणो न गण सको, ऊठ सिदारे केत। जो पेखो सो बिनसतो, कास्यों करिए संग। ज्ञानो या विद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए, प्रमते की चत पिन। अंधकूप ते ते कढ़ो, जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा के हाथ

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करो तो एक की जाते बिरथा न कोए,

पाल साधु संगत तो बसे जो आपन हुए दयाल। तो ही ताहे बहु पवन बिन नावे सुख नाहे, तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कदके। श्लोक थाक ना होती तिन्हो दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनु आठा है नाही, जो सगल त्याग एक लपताही। ठैक ठैक माया संग मुए, हुआ कै कुशल न कथु हुए। ठांड परी संते संग बसिया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकुर अपने जो जन पाया, नानक ओआ का।

डेरा ने चल सत सात संग पाया, नानक ते जन ने डोलाया। श्लोक तारन लागे धर्म राय, किने न काल्यो बंद, नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिरो, टूंडन या मन माहे, संग तुहार है प्रभ बसे, बन बन कहां फिराहे। तेरी ताहो साध संग,

ना होना तूने छुटे निकट ना जायो दूत पौड़ी ना रण ते सीजी है आत्म जीते कोए हो मैं अनस्यो लर मरे सो शोभा दूए मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश मनुआ जीते हर मिले ते सूरतन वेश ना को जाने आपनो एक टेक आधार रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक तन मन तन अर्पो तिते प्रभु मिलावे मोहे नानक परम पो काटिए चूके जमकी जो पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राए फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ ताहू संग न तन चले गृह जोबन नह राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज ताता कछु न होई है जो ताप निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप श्लोक थाके बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संत संत साकत हुए नानक माया ना साथ पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल करो माया एक उपाव थैली संचो त्रम करो थाक परो गावार मन के कामना आवई अंते अवसर बार थित पावो गोविंद पजो

नानक नाम ते आई है कारज आवे रास। पौड़ी सदा तावत तो मिटे संत संग हो बास, तुरते कृपा।

जा के मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पचित्रो मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पाप का छत्र सिर सो, नानक दूसर

आई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग में पाया फिर या अवसर चरे न हाथा नाम जपो तो कटिए पासा फिर आवन जान न होई एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभु।

बुरा निकट नहीं आवे। बांध्यो आपन हों हों बंदा, दोष देत आगे को अंधा। बात चीत सब रही सियानप, जिसे जनावो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग दुख नास, मने अराध हरे संत संग जे रिद बस्यो। नानक तेना प्रमे पौड़ी, पब्बा परम मिटावो अपना। या संसार सगल है सुपना, परमे तुर नर देवी देवा। परमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा, परम परम मानुख डहकाए। दुत्तर महा बिखम ए माए, गुरुमुख परम पै मोह मिटाया। नानक ते परम

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू तिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

के भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मरम पछाना एतत साध संग पतियाना दुख सुख उआ के समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूरन कट कट पुरख बिसेखा ओ आरस में ओ

जा की तज अभिमान छुटे तेरी बाकी रण दरगे तो सीजें पाई जो गुरुमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाए बिकारा गुर पूरे के शब्द अपारा राते रंग नाम रस

हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी। लल्ला लावो औखद जाहो दुख दर्द ते मिटहिं खिनाहु नाम औखद।

नानक मस्तक पाग पौड़ी। ससा सरन परे अभारे, शास्त्र सिमरत देव पुकारे, सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर पजन नहीं छुटकारा। सास सास हम पूलन हारे, तुम समरथ अगनत अपारे, सरन परे की राख दयाला।

पौड़ी। खखा खरासरा होता हूँ जो खिन में ऊने सुबर परा हूँ, खरा निमाना होत परानी अंगिन जापे प्रभ निर्वाणी। पावे खसमता ओ आ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता, असंख खते खिन बक्सन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए, उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ एयाना, हिकमत हुकम ना प्रपति आना, सहस पांच करें चतुराई संग तुहारे।

हेरो काट काट सगल के पूर्व भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुरु ज्ञान। हौ छुटके होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हु किया नानक सब कछ प्रवते हुआ। श्लोक लेखे कते न छूटिए किन किन पूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुनेगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैज स्टूडन जाए देवन हार दतार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच चूट विकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हु संग बिहाए। तुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। श्लोक हाथ पीत खेलत हस्त परमे जन्म अनेक पव जल से काट।

विनत सतगुरु बचन समाए खिमा गई सत संचयो खायो अमृत नाम हरी कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत खरा दिलासा गुरु दिया आए मिले भगवंत आपन किया करें आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे अक्षर कर कर वेद विचारे अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना अक्षर नाद कथन वख्याना अक्षर मुकुत जुगत पै परमा अक्षर कर्म किर्त सुच परमा दृष्टमान अक्षर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती पुस्तक कह न जाए मुखों तुहारी।

एक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए श्लोक गुरुदेव माता गुरु

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रब मेल कर कृपा, हम मूर पापी जित लग तरा, गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर

दूर जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं शपै शांतता प्रसाद। चक्कर चेह नर बरन जात अर पात नहन गेहे। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत गेहे। अचल मूर्तन पौ प्रकाश अमितोज कहे जय। कोट इंद्र इंद्राण साहन गणे जय। त्रिपवन मीप सुर नार्य सुर नेत नेत वन तृण कैत। तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयात शंभ। नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले। नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे। नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे। नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये। नमस्तंग अगंजे नमस्तंग पंजे। नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे। नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अधर्मंग। नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अथामंग। नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते। नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे। नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे। नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे। नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे। नमस्तंग उधारे नमस्तंग अपारे। नमस्तंग सुएकै नमस्तंग अनेकै। नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे। नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे। नमस्तंग निरदेशे नमस्तंग निरपेशे। नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे। नमस्तंग निरदाते नमस्तंग निरखाते। नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अभूते। नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके। नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे। नमस्तंग तरमाने नमस्तंग निदाने। नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे। नमस्तंग तरवर्गे नमस्तंग असर्गे। नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सजोगे। नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे। नमस्तंग अगम्य नमस्तास्तरम्य। नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे। नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते। नमस्तंग अमजवे नमस्तास्तजवे। अधेसंग अधेसे नमस्तंग अपेसे। नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले। नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे। नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे। नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले। नमस्तास्तदेवाय नमस्तंग अपेवाय। नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे। नमो सर्वगौणे नमो सर्वभावणे। नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे। नमो कालकाले नमस्तास्तदयाले। नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे। नमस्तंग जरारंग नमस्तंग करदारंग। नमो सर्वतंदे नमो वस्त्रबंदे। नमस्तंग नरसाके नमस्तंग दरवाके। नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे। नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते। नमस्तास्तरागे नमस्तंग सुहागे। नमो सर्वसोखंग नमो सर्वपोखंग। नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता। नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे। नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। चाचरी छंद तव प्रसाद। अरूप है अनूप है जूह है पूह है। अलेख है पेख है नाम है काम है। अदेह अपेह जीत है अपीत है। तिरमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है। अनिल है अनाद है अजय है जाद है। अजन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है। अगंज है पांज है चूज है चंज है। अमीक है रफीक है दंध है बंध है। निर्भूज है सूझ है काल है जाल है। अल्लाह है जह अनंत है महंत है। अलीक है नरसरीक है निर्लंब है स्वंभ है। अगम है जम है भूत है शूत है। अलोक है शोक है कर्म है परम है। अजीत है पीत है बह है। अमान है निदान अनेक है फिर एक है। भुजंग प्रयात शंद। नमो सर्वमान्य समाज दीन दाने। नमो देव देवे अपेखी अपेवे। नमो काल काले नमो सर्व पाले। नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे। अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे। नमो पान पाने नमो मन माने। नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने। नमो गीत गीते नमो दान दाने। नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे। नमो पान पाने नमो बद बादे। अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे। परपंगी परमाथे समाधि भूते।

महामूढ़ का भेद न जानत। महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चिंत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत बिन बिन दोय देती। तुमरा लखना जाय पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राग कहीं भूपा। अंडज जेरज सिदज कीनी, उत्पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं भूल राजा वह बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव, आज जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संग्रो। दोष जीते उठव तुद बाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तुझ तब शरणी परे, तिनके दोष्ट दुगत वह मरे। पुरख जवन भग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। हृद सद कर्म सब होई, दुष्ट शास्व सक न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उभारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दोष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दल उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दोष्ट दोख ते लेह बचाई।

कृपा करी हम पर जग माता। ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, कल व्यक्त सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, सरिया स्तुज पय दयाला। पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ल। सुनै गंग जो जाहि सुरस न पावई, सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट नातिन नरके रहै, हो जो जां की एक बार, चौपई को कहे चौपई। संबत सत्रह सहस प्रणय जय, अर्ध सहस पुण तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। सिमर

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज से ती मन भजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द तां गावो हरि के रामन जिनि बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

आवे। नाम जिन कह मन बसे आवाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहेब क्या नाही कर दे रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो, जिस दियां ए वड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया।

कहे नानक श्री प्रवान हुआ जिन सतगुर सिम चित लाया। ए नेत्र मेरे हर तो मैं जो धरी हर बिना वर ना देखो कोई, हर बिना वर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। ए विश संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझा ने वेखा हर एक है हर बिना वर ना कोई। कहे नानक नेत्रांत से सतगुर मिलया इंद बदरट होई। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाई, साचा सुनने नो पठाई श्रीर लाई सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी, सच रख वडाणी ताकी गद कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुनने नो पठाई। हार जियो गुफा अंदर रख कह बाज

हर दूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: रेडियो CISK 94.3 सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लिए तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

लाटू मदानिया अंगाह पंखी पौंदे लैना सा सुए चाड़ पाइए जंत नानक पौंदिया गंतन अंत बंदन।

हल मल खाई सिखाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई मिलना मैं किस्था न पाई रहे बिबाणी मणि मथाणी।

कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तो है। सचता पर जानिए जान सच करे प्यार, नाउ सुन मन रहस्य का पाए मोख द्वार। सचता पर जानिए जा झुक जाने दियो, तरत काया साध कै विच दे करता बियो। सचता पर जानिए जा सिख सचीले।

दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए हुए एक मन अलग से आइए पल चले हो पाइए जे वही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूर्तना दी पाइए मत थोड़ी देव गवाइए।

लब पाप दुए राजा मेहता कूर हुआ सरदार। काम नेव सब पुछी है बह बह करे विचार। अंधी रवि अज्ञानी हुई पाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार। ऊंचे कूके वादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हो।

सदगुरु बटवारे जित मिले कसम संभाल लिया जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बंजारिया सदगुरु है बोझा गिरले किने विचारिया कर कृपा।

कपड़ रूप सुहावना छर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही किता पावना हुकम किए मन भाव दे रहा पीड़े अगे जावना नंगा दुख चालिया ता जिस

चिट्ठे अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाएगा, आपे देवड़िया आपे ही कर्म कराएगा, वड़ो बड़ा वड़मेजनी सिरे सिर धंधे लाएगा।

पौड़ी जिसके लिए सुपाइए सो सैर सरा संभालिए जिसकी पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मोड़ना की चाहिए लमी नगर ने हालिए जो साहब ना हारिए देवी पासा टालिए के चलाहे ऊपर कालिए के चलाहे।

आपे भांडे साजने आपे पूरन दे, एक नी दुध समाइए एक किले रण चढ़े, एक ने हाली पैसम

सुख तब सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जन को प्रभ मया, नानक जन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंत जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहां नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जप्त होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परै, हर का नाम जप्त निस्तरै। अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जप्त आघावै। जे मार्ग एह जात अकेला, तह हर नाम संग होत सोहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख वाही, नाम जप्त तह पार पराही। अनक बिघन जह आय संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कब हुन धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जह पैंडै महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सुजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महाभयान तप्त बहु काम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्खै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत जन रात, हर हर औकद साधक मात। हर जन कह हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कह बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर तब नसै। संत का संग वड भागी पाइय, संत की सेवा नाम ते आइय। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमरत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन मध्य क्रिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम बीचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास स्थिति सर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अस्व है भरभूम दान। न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संज

अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तौ के हमें मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान नमन ते हुटै। सोच करै दिन अर रात मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कभू न बिख्या टरै। जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतत बहमूच। बहुत स्याणप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट अपाव दरगह नहीं सिझै। झूठ सुनाही ऊह पयाल मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमदानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ देखो मांगै साध बिना की सेवा लागै। जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै। जेको अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै छोरै। जेको जन्म मरण ते डरै साध बिना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट पीना। मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन कौ धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभु तेरो मान सगल घटा को देव हो दान। कर्ण करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते। तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सुखोए। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया। सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे घट बसै हर नाम श्लोक।

नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार थी गारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्श ले हो तव नानक सीझ है जे प्रसाद धर ऊपर सुख वस है सुत भ्रात मीत बनता संघस है जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे आद अंत जोरा खनहार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जहाँ की सेवा नव निंद पावे ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जहाँ की टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्थिर करमानै जो हवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द विपरीत भस्म संग होए अंधकूप में पत बिकराल नानक काट ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहीं कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाक अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ दिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न तीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहो नसी जाए बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस कारण विखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर त्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै अनब उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रखै प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तह अंध अंधार बटाओ स्यों जो लावै नेह ताको हासन आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्द को रह। मिथ्या नेत्र पेखक पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर बकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेख बिकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन बिन रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निराथ नाम। धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कुमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू तीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिस कह अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने। आप है आप करत ने बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंदर रहया समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नान।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे अतिहाय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई है ध्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अवर लुभावह जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जे प्रसाद सब को मन मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै जे प्रसाद तुझको ना पहुँच मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जे प्रसाद आपूकं पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आल सुखी जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिल धना राख त्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरे मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है यहाँ ऊहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद जे प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जे बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कट लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मन हो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे

आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभु तेरी माया, आप हो कछु न किन्हु लया। जित जित लाव हो तित लगे हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे सुमानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया के भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सर धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कुलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग नांदिर्थ जावै। पार ब्रह्म साध रिद्वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा

एक सिबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे।

आकाश जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भये, नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी से कछ बुरा न पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार।

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाय अधाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी

तैसा अमृत तैसी दिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

प्रवृत्ति बहुविध अंक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थास्त्र, कई कोट किए रतन समुद्र।

कोट काले थक पाहे, कई कोट पिए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जय जय पाणा तै तह राखे, नानक सब किच प्रभ कै हाथे। कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संगत निंद विलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लानते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलो प्रभ अविनाश। कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट है अवतार, कई ज्योत किनो विस्तार। कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने को, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई को

अमर पहे सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास समारे, नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्तपरी। करण क्रावन करना जोग जो तिस भाव सोई होग, खिन मह थाप उथा पुनहारा अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजा हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रह समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र त्रावै, प्रभ भावै बिन सास तिराखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जानी, जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै, कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै, इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे, अनजान बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दिस्तावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिसा

नानक गर्भ गली अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान न जो बनवंत सो होवत विष्टाका जंत आपस कहो कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक न पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोय, संत कै दुखन तन प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख के टरै, संत के दुखी को नाहीं ठाओ, नानक संत पावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच ते टूटै, संत का दुखी कतै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवन राखन हार, नानक संत पावै तैं ले उबार, संत का दुखी यों बिल्लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहें दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदम त्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभ की उस्तद करहो दिन रात, तिसह त्याग हो सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी।

सोई लागै, जिसनु कृपा करह वड भागै, नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिनपुर कौ उत्तम करमान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाय होवै सो होय, करणै हार पुछाणै सोय, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उधरिया नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व दिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचे कोए, जिस बिन नाही तेरा किस काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सो है, धनवंता होए क्या को गर्वै, जां सब किछ तिसका दिया दरबै, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए वह दातार, तिस देनहार जानै गावार, जिस गुर प्रसाद टूटै हा रोग, नानक सोजन सदा अरोग, ज्यों मंदर को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनै असमन, ज्यों पाखान नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै, ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुरदर्शन देख मन होय विगास, ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बाछो धूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल लाइय, पुरब लिखे का लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसह चितार, जो किछ करै सोई सुख मान, भूला काय फिरै आजान, कौन बस आई तेरा संग, लप्त रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहि, नानक पद सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उज्जल हर दर गह सोय, एह व्यापार विरला व्यापार, नानक ता कह सद बलिहार, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइया कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाय, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, प्रभु लिखे का लहना पाहे,

सास सास सिमार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत्र रख ताकि गत में कोई

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सहस सियाणप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरख्य हो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नान

ना पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए, अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिते अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे, जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी। अनक उपावे रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबोधो हर कहनाई, दह दिस तावत आवै ठाए। ताको बिघ्न न लागे कोए, जा कर दह बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख।

उद्धार। हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे। सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भक्त करो मन लाए। मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना। तू क्या लपटा है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता। इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार। इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ हसवारी। झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै नाम बिगाना। नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने। भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करहो मन मीत।

जन्म जन्म का टूटा गंढ है, गुर पूरे तत् है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जप हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होती छार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इही सुआओ, नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिकस साध चरण धोए, भगत जना कह मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राग भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन

जय अथल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप कहो आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच से ऊंचा नानक आप कहो आप है पहुंचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में कीनो विस्थार पाप पुन तह भई कहावत।

आप कर देख खेल संकोच है तव नानक एक है जह अवगत भगत जह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक करह।

है दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपालै जीअन बहु पात, जो जो रचो सो तिसै त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरति जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अंदन पूजे गुरु के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुआओ, आठ पहर प्रभ वेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन सह अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो, हलत पलत दुए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बस है तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए, सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निभ है खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवह जाहे, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए, निर्भौ जपै सगल भौ मिटै।

उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके नित न आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परदास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निद अमृत प्रभु का नाम देहि मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई आचार्य विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धर्म माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरुप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख सस्यर सूर नक्षत्र मह

आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पे खनहारा सगल समग्री जा का तना आप न जस आप ही सुना।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पार ले हो भंडार, नानक गुर पूरे।

जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल एह रतन सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोक कह निसार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक में भी खेप हमारे प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तपका वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोय सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुम बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन।

0: नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊच ताकि सो बावनी नानक ए गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केवू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: जिंदे जिंदे कष्ट सहे
1: मेरे गुरु पथ में मेरे गुरु पथ में किते किते कष्ट सहे
0: ओ मेरे गुरु पथ में किते किते कष्ट सहे ओ चाहे चाहे पिंडा ओ चाले चाले पिंडा सती तेल में उबारिया चाले चाले पिंडा सती तेल में

0: गोविंद सिंह सूर मेरे
1: ओ मेरे गुरु दस में गोविंद सिंह सूर मेरे
2: ओ माता पिता वारे माता पिता वारे पड़ी।

आखड़े पीटो दे आखड़े संग टी दीवार से आखड़े तो मैं गुरु का नाम प्या तो मैं गुरु का

अजय अंदर तीर्थ नहीं बनेगा। बाणी पढ़ता हाँ, बाणी सुनता हाँ, अंदर नहीं है उन्हें जन्ना। इसलिए बाणी पढ़ सुनना, अखंड पाठ करन कराने वाले, कीर्तन दरबार करन कराने वाले भी अनेक पापा विच भी ग्रस्त दिसदे ने। इसलिए नहीं कि बाणी विच पवित्र करन दी शक्ति नहीं, वो बाणी दे नेड़े नहीं मन नूं आउण दिंदे। बाणी अंदर जावे ते मन नाल छोड़े दरवाजे तो ही मोड़ दिंदे। अंतरगत तीर्थ नहीं बनन दिंदे। गुरु ने अपनी रचना तो आख्या, कहन लगे भरिया कल दी विचार मुताबिक तू मलेच हो चुका है, भरिया मत पापा के संग हो चुकी है, उन्हें धो लै। धोने का तरीका है वो धोपे नवे के रंग, आखिर मैल तो धोनी पड़ेगी, मैल तो धोन की लोड़ है। धोबी धोवे बिरा बिराता, गुरु धोबी जे आपको ना धोपे तो गुरु अगर समर्पण कर मन। आखिर जी मैनू नहीं धोना होता, तू तो है गुरु तो देगा, तुम भी तो हो, पर तो ना बनेगा खूबसूरती नहीं निकलनी किसी भी कपड़े की जिन्नी देर धोता ना जाए। मन मैले सब कुछ मैला। हम एक ख्याल करिए, सवाल खड़ा हो गया, अज के लोग तीर्थां ते इशनान करन जांदे ने, वह भी यह सोचते हैं पापा की मैल उतर जाती है। जी मैल ही उतारन का मसला है, जी पाप ही मैल ने, जी गुनाह ही मैल ने, तो फिर जो तीर्थां ते इशनान करते हैं उठे जाके तप करते हैं, उठे जाके दान करते हैं, इसे ख्याल वो करते हैं ना पापा की मैल उतर जाती है। स्नान कर आया आप कई बार आखते पुराने तो गंगा नाता हो गया, गंगा तो स्नान कर आया पापा की मैल उतर गई, पापा की मैल उतर गई। गुरु कहते नहीं, गंगा दे सरस्वती दे सरस्वती दे गोदावरी दे जिन्ने दरिया ने जिन्नी त्रिवेणी है उनके है कि पानी, पानी तो पानी फिर पानी तण में हो सकता पर यह हाथ पैर तण दे पानी धोते उतर सके। खर्च करा जाने अनजाने वह ब्राह्मण इसम और कर्म कांड साडे भी प्रवृत्त हो रहा है, भ्रमण असी भी पढ़ रहे हैं। असं भी इसलिए धर्म तो अगे वध के धर्म की क्रिया तक नहीं पहुंच रहे, असं भी बाहर एक तीर्थ निश्चित कर रहे हैं, बड़े कर लेने। मैं एक बात की थी, वो भरम साले में भी आ गए हैं, असं सौखे तरीके पाल रहे, इशनान किया पाप उतर गए। एक बात की थी, साले में भी आ गए, सर में लंघ जाओ बस मुकुत हो गया। गुरु कर्म कांड विच नहीं पाना चाहता, भरना विच नहीं पाना चाहता। रात भी कल की थी, अकीर्ति तो किरत की है, जिंदे विच कुछ करना ना पवे पर मिल जाए वो किरत है, तो वो सारी पाप है। रात भी उसकी थी, जिन्हें चोर ने डाकू ने ठग ने वो अकीर्त विचों पैदा होते, वो चाहते किरत ना करनी पवे, करना कुछ ना पवे दौलत मिल जाए, प्राप्ति चाहते नहीं, यह भी प्राप्ति नहीं चाहते, प्राप्ति चाहते हैं पर बिना कुछ किए। जिन्हें भी बिना कुछ किए प्राप्ति चाहते हैं उन्होंने निश्चय हो ही है, चोर ने ठग ने डाकू ने जुआरी ने अकीर्ति ने, तो कीर्ति मनुख प्राप्ति चाहता है वह कहें करके कुछ प्राप्त कर करके।
ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਣ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ।